पत्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

0: चल मैं ना यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, इन मुश्तंडों से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर।
1: Here's more upbeat music on Radio Jaggerty 102.7 FM's Overnight Mix.

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: मालूम किसी से किसी से किसी से चक्कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: ना ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं
1: ना जी ना जी ना जी,

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर।

0: 102.7 FM, आपका धर्म, आपका स्टेशन, रेडियो जागृति।
1: जय सीताराम। पितृपक्ष फोर्टनाइट ऑफ द एंसेस्टर्स इज अ 15 लूनर डे पीरियड इन द हिंदू कैलेंडर अकरिंग इन द डार्क हाफ कृष्ण पक्ष ऑफ द लूनर मंथ ऑफ अश्विन सितंबर अक्टूबर। Hindus pay homage to their ancestors, Pitris, especially through the gifts of food and Tilanjali. When the legendary donor,

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

साधन एक बार श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। डियर फ्रेंड्स, वी इनवाइट दोज हु आर वेल इनफ टू प्लीज स्टैंड एज वी परफॉर्म आवर आरती एज वी वेलकम भगवान श्री कृष्ण एंड ऑल द अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन लॉर्ड टू बी प्रेजेंट एज वी वर्शिप देम।

the name Ram. He was not Balaram yet. He was given the name Ram. इसलिए इसका नाम राम रखना चाहिए और बल अधिक होगा इसलिए इसका नाम बलदेव रखना. But he will be very strong. He will be a very powerful individual, very muscular and so. So his name will be Balaram. From Ram he got Balaram. चाहिए और बिछड़े यादवों को मिलाएगा इससे इसका नाम शंकरशन होगा. He also got the name Shankarshan because of all the virtues that he will have. A very noble son he will be indeed. So Balaram Shankarshan, that is the name of Rohini's son. This was the seventh child of Vasudev and Devaki. और यह जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, and this the second son, यह युग युग में अवतार धारण करता है और इसके तीन रंग हुए, श्वेत लाल पीला. सतयुग में शुक्ल वर्ण हुआ, त्रेता में लाल वर्ण हुआ और द्वापर में पीत वर्ण हुआ. अब इंद्र नील मनीष के सदृश श्याम सुंदर रूप धारण किया है इसलिए इसका कृष्ण नाम रखना चाहिए. दिस अदर सन ही विल बी नेम कृष्ण बिकॉज अट इन दैट युग ही केम डार्क सो ही विल नेम कृष्ण. द प्रीवियस प्रीवियस युगस ही केम इन डिफरेंट कलर्स स्वेट एंड सो ऑन रेड एटसेट्रा. नाउ ही केम ब्लू इन कलर, dark in complexion. His name will be Krishna. किसी समय यह तुम्हारा महाभाग पुत्र वसुदेव जी के घर जन्मा था इसलिए ज्ञानी पुरुष इसका नाम वासुदेव भी कहेंगे. Sometime before he was born to Vasudev. As I mentioned earlier, Krishna was born to Vasudeva and Devaki. Again, we use the term born, but remember he had manifested, he had appeared in the cell of Vasudeva and Devaki. So, because his father's name is Vasudev, he will also be called Vasudev. Know the difference. There is a difference between Vasudev and Vasudev. Vasudev is his father. Vasudev is Bhagwan Krishna. The mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Not Vasudev, but Vasudev. Vasudev is another name of Bhagwan Krishna. Tumhare putra ke गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम है और रूप भी अनेक है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, दीज आर नेम्स दैट वी आर आई एम गिवन टू दीज बॉयज बट देयर नेम्स आर काउंटलेस. दे हैव मेनी मेनी नेम्स एंड दे हैव मेनी फॉर्म्स जस्ट एज भगवान हैज मेनी नेम्स एंड मेनी फॉर्म्स सो टू बलराम Krishna, they have many names, they have many forms, as many manifestations as we know. All belongs to that same one Supreme Lord and Master. Unko main nahi janta aur koi dusra purush bhi nahi janta. No one can fully understand and appreciate the glories and the greatness of these two boys, these two sons of yours. क्योंकि यह बालक परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है. He's पार ब्रह्म परमेश्वर. He's the incarnation of the supreme lord and master, the lord of the entire universe. That is who this Krishna is. He is no ordinary human being. He's no